वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी खाद्य संस्कृति में तरह तरह के व्यंजन हैं। हमें तो बस बहाने ढूंढने हैं उनसे दोबारा मिलने के। अब आप क्यूकम्बर स्मूदी की ही बात ले लो। हमारी भारतीय खाद्य संस्कृति में थाली के लेफ्ट साइड मतलब बाई ओर नमक, चटनी, कचुम्बर और पापड़ जैसे व्यंजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में परोसे जाते हैं, जिससे हमारे भोजन का स्वाद और ज्यादा निखरता है। सीजन के मुताबिक चटनी और कचुम्बर के टाइप्स को चेंज करना हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। पर्टिकुलर सीजन में जो भी फल और सब्जियां उपलब्ध होती हैं, उस हिसाब से हमारा भोजन तैयार होना ही चाहिए। फिलहाल गर्मी वाला जो सीजन चल रहा है उसमें हमने इंटरेस्टिंग रेसिपीज बना ली हैं। अगर आपके पास भी ऐसी ही सीजन स्पेशल इंटरेस्टिंग रेसिपीज हैं, तो हमें जरूर लिखिए। हमारे देश की खाद्य संस्कृति को निभाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज शुरुआत में हमने बनाया मैंगो पुलाव। भिगोए हुए बासमती चावल, हापुस आम और कुछ चुनिंदा मसालों को यूज करके हमने मैंगो पुलाव इस यमी रेसिपी को एकदम शिद्दत से बनाया है कि नहीं। मैंगो सीजन को हर तरह से सेलिब्रेट करने की ये हमारी छोटी सी कोशिश एकदम कामयाब रही। उसके बाद हमने एक नॉन फायर रेसिपी बनाई। क्यूकम्बर स्मूदी नाम की इस मखमली रेसिपी ने गर्मी को थोड़ा कम करने की सफल कोशिश की। क्रिस्टल डेकोरेशन वाली और दही के साथ खीरा मींस ककड़ी का कॉम्बिनेशन तो गर्मी को मात देने एकदम सुपर कूल कॉम्बिनेशन साबित हुआ। अजी जनाब, बिना तले भी हम बहुत सी चटपटी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज बना ही सकते हैं। खाने को डीप फ्राई करने की बजाय थोड़ा सा तेल लगाकर हम नॉन स्टिक पैन पर अपनी रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें, फॉर एग्जाम्पल पकोड़े, जो बारिश के मौसम में सिग्नेचर डिश है, उसे कैसे बनाएं? तो जनाब जरा सुनिए। आप अप्पम पात्र को जानते हैं? हाँ, वही जिसमें अप्पम बनाते हैं, जिसमें इडली पात्र के जैसे कई सारे खांचे होते हैं। हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। उसके हर एक खांचे में लगभग आधा चम्मच तेल फैलाकर हम पकोड़े भी तलेंगे और बटाटा वड़ा भी तलेंगे। कब? कब मतलब झमाझम बारिश को शुरू तो होने दीजिए, मौसम को करवट तो लेने दीजिए, सुहाना सा सावन बरसने तो दीजिए। फिर हम हाले दिल को बयान भी करेंगे और साथ ही लजीज खाने का जश्न भी मनाएंगे। लेकिन उसके पहले आप कीजिए एक काम, आचार्य 90 FM इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आपकी खिदमत करने का एक मौका दीजिए। वैसे बारिश के सुहाने मौसम में वो कौन सी चीज है जिसे खाना आपको बेहद पसंद है? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अर्ज किया है, मेरी जमीन पर कितने ही आसमान रहे, आचार्य 90 FM के ऑडियंस का हमेशा ही साथ रहे। फिर लेकर आऊंगी मैं कुछ रेसिपीज सुहानी, हर रेसिपी के साथ एक छोटी सी कहानी। मिलना है हमें हर सोमवार और शुक्रवार, जायके के सफर में दिल हुआ बेकरार, सजती है थाली और खाने में मसाले, आऊंगी मैं वापस अपना वादा निभाने। हमारी भारतीय संस्कृति में जायके का भंडार। ऑडियंस जी, जल्द ही मिलेंगे हम और लाएंगे स्वाद के जायके का दरबार। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: है मान तो।
1: अरे सर आप गए नहीं, आप तो 5 मिनट में जाने वाले थे। ये क्या बना रहे हैं आप?
2: ये मेढक, ये बतख और ये केला।
1: मेढक।

0: बच्चों बच्चों बच्चों, कैसी है पेंटिंग? देखिए देखो,
1: अति सुंदर सर,
2: फर्स्ट प्राइज सर।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आर्जे शब्बीर लेके आया हूँ कहानियों के गुल्लक। आज हम सुनने वाले एक ऐसी कहानी जिसमें तीन अलग अलग किरदार है, और ये कहानी है प्री इंडिपेंडेंस एरा की, यानी आज़ादी के पहले की, जिसे कि हम सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली है। हमने आज़ादी के लिए कितना बलिदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने कितने शहीद हुए हैं, कितनों ने जेल काटी है, कितनों ने ना जाने कितनी वेदनाएं सही हैं। तो उन्हीं कहानियों में से, उन्हीं गाथाओं में से एक कहानी मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। तीन रंग एक खून, एक आजादी की दास्तां। पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के जुल्म के नीचे दबा हुआ था। गलियों में खौफ था, खेतों में भूख थी, और जवानों के दिल में एक ही आग जल रही थी, आजादी। हर शहर में पुलिस की सीटियां गूंजती थी और हर चौक पर गोरा सिपाही खड़ा होता था। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के कांधे पर बंदूक। लेकिन उस अंधेरे के दौर में भी कुछ लोग दिया बनके जल रहे थे, और उन्हीं दियों में तीन नाम सबसे अलग चमकते थे, आनंद, अशफाक और अमित। तीन दोस्त, तीन अलग कहानियां, तीन अलग मजहब और घराने, लेकिन एक ही सपना, हिंदुस्तान आजाद होना चाहिए। और इसी सपने के लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपनी मोहब्बत, अपना घर और आखिर में अपनी जान तक त्याग दी। ये कहानी है दोस्तों की, मोहब्बत की, बलिदान की, और उस मिट्टी की जिसके लिए लोग हंसते हंसते शहीद हो गए। बनारस की सुबह हमेशा से अलग होती थी। गंगा घाट पे मंदिरों की घंटियां बजती थी, कहीं अजान की आवाज थी, कहीं से वंदे मातरम धीरे धीरे हवा में ठहरता था। 1942 का साल था। सुबह के 5 बजे आनंद घाट की सीढ़ियों पर बैठा था। हाथ में एक पुरानी डायरी थी और आंखों में सपने। सफेद कुर्ता, पतला सा शरीर और चेहरे पर अजीब सा सुकून। तभी पीछे से आवाज आई, अरे कवि बाबू, देश आजाद करोगे या घाट पे शायरिया ही लिखते रहोगे? आनंद मुस्कुरा दिया, अशफाक तू सुबह सुबह बकवास की फैक्ट्री खोल देता है। अशफाक हंस पड़ा। अशफाक अली, तेज आंखें, गहरी आवाज, मजबूत कांधे और दिल बच्चे जैसा। उसके कांधे पर एक झोला था जिसमें कुछ कागज और छुपा हुआ क्रांतिकारी पैम्पलेट था। दोनों बात ही कर रहे थे कि पीछे से एक आवाज और आई, तुम दोनों फिर लेटो। यह अमित था, लंबा कद, माता हमेशा टेंशन से भरा हुआ क्योंकि घर की जिम्मेदारियां उसके कांधों पर जो थी। अमित के पिता बीमार ही रहते थे, घर में माँ और दो छोटे भाई थे, इसलिए अमित बचपन से ही वक्त से पहले बड़ा हो गया था। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा, अरे नेताजी, आज का प्लान बताओ। अमित ने धीरे से कहा, कल रात पुलिस ने दो लड़कों को पकड़ लिया है। अंग्रेजों को शक है कि यहाँ क्रांतिकारी पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। आनंद का चेहरा सीरियस हो गया। नाम, रघु और करीम, तीनों चुप हो गए क्योंकि बनारस में अब सिर्फ दोस्ती या मोहब्बत नहीं चल रही थी, अब हर दिन मौत पास खड़ी रहती थी। हेमा, उसका नाम सुनते ही आनंद की सांसें बढ़ जाती थी। हेमा बनारस की एक स्कूल मास्टर की बेटी थी, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार। उसकी आंखों में अजीब सी हिम्मत थी। वो लड़कियों को पढ़ाती थी और चुपचाप क्रांतिकारियों के लिए संदेश भी पहुंचाती थी। आनंद पहली बार उसे लाइब्रेरी में मिला था। वो हरिश्चंद्र की किताब ढूंढ रही थी। आनंद ने किताब बढ़ाते हुए कहा था, ये लो। हेमा ने किताब ली और पूछा, आपने पढ़ी है? आनंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 3 बार। हेमा ने पूछा, अच्छी लगी? किताब से ज्यादा उससे पढ़ने वाली अच्छी लगती है, आनंद ने जवाब दिया। और उस दिन हेमा पहली बार शर्माई थी, और तब से आनंद हर रोज लाइब्रेरी में जाने लगा। एक शाम हेमा घाट पर आनंद से मिली, हमें मिलना कम कर देना चाहिए, हेमा ने कहा। आनंद का दिल धक से रह गया। क्यों? पुलिस नजर रख रही है, डर लगता है। हेमा ने उसकी आंखों में देखा, अपने लिए नहीं डर लगता, पर तुम्हारे लिए जरूर लगता है।
आनंद धीरे से बोला, अगर आजादी के रास्ते में मोहब्बत आ गई तो? हेमा मुस्कुराई, तो मोहब्बत भी कुर्बान कर देंगे और क्या। उस रात आनंद ने डायरी में लिखा, कुछ लोग जिंदगी में प्यार बन के आते हैं और कुछ लोग वतन बन जाते हैं। अशफाक जब 9 साल का था तब उसके अब्बा की मौत हो चुकी थी। तब से उसकी दुनिया सिर्फ उसकी अम्मी थी। उसकी अम्मी सिलाई करती थी, दिन भर कपड़े सिलती, तब जाके घर चलता। अशफाक रात को अक्सर उठकर देखता उसकी अम्मी धीमी रोशनी में आंखों पर कपड़ा रखकर सुई में धागा डाल रही होती। एक दिन अशफाक ने कहा, अम्मी मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। उसकी अम्मी गुस्से में बोली, एक थप्पड़ दूंगी, तुम पढ़ोगे, बहुत पढ़ोगे, लेकिन पैसे। अशफाक ने कहा, तुम्हारे अब्बा का सपना था मेरा बेटा अफसर बने। अशफाक की अम्मी ने जवाब दिया। अशफाक चुप हो गया, लेकिन वक्त बदलता गया और अफसर बनने का सपना क्रांतिकारी बनने में बदल गया। एक रात अशफाक देर से घर आया, कपड़ों पर खून था। उसकी अम्मी घबरा गई, या अल्लाह क्या हुआ। अशफाक ने झूठ बोला, कुछ नहीं अम्मी, गिर गया था, लेकिन माँ सब समझ जाती है। उसने धीरे से पूछा, अंग्रेजों से लड़ रहे हो ना। अशफाक चुप रहा। उसकी अम्मी की आंखें भर गई। एक बार तुम्हारे अब्बा को खोया है अशफाक, तुम्हें नहीं खोना चाहते। अशफाक ने माँ का हाथ पकड़ा, अम्मी अगर हम नहीं लड़ेंगे तो ये जुल्म कब खत्म होगा, हम कैसे

एक दिन माँ ने कहा, बेटा कोई नौकरी देख ले। अमित चुप रहा। उसके पास एक तरफ घर था और दूसरी तरफ देश। उस रात आनंद ने पूछा, तू टेंशन में लग रहा है। अमित ने बस एक बात कही, हर आदमी को आजादी चाहिए, लेकिन घर वाले रोटी भी मांगते हैं। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा, तू अकेला नहीं है अमित। अमित की आंखें भर गई, क्योंकि दोस्ती कभी कभी घर से भी ज्यादा सहारा बन जाती है।

सो स्वागत है दोस्तों आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे तीन दोस्तों की कहानी, अमित, आनंद और अशफाक। कैसे तीनों के घर पे अलग अलग जिम्मेदारियां थी। आनंद अपनी मोहब्बत में गुम था, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में, उसके जहन में, उसके दिमाग में देश चल रहा था। वही दूसरी ओर अशफाक है जिसके फादर नहीं है, और उसके लिए अगर सब कुछ जो है तो वो उसकी माँ है। तीसरी तरफ अमित है जिसके घर पे उसके पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, भाइयों के लिए स्कूल देखना है और घर में ज़रूरतों का सामान भी ज़्यादा तरीके से नहीं होता। तो तीन दोस्त तीन अलग अलग कहानियाँ जी रहे थे, तीन अलग अलग जिंदगी जी रहे थे, पर इन तीन दोस्तों में एक चीज़ कॉमन थी, वो एक सपना, वो एक आज़ादी का सपना। तो चलिए सुनते हैं आज़ादी के लिए अब इन तीन दोस्तों ने क्या किया। अगस्त 1942, महात्मा गांधी ने आवाज उठाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरा देश जल उठा। रेलवे स्टेशन पर नारे लगने लगे, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। बनारस भी उबल रहा था। तीनों दोस्त अब खुले आंदोलन में शामिल हो गए, पैम्फलेट बांटने लगे, ग्रुप मीटिंग्स करने लगे। पुलिस की मूवमेंट देखना हर दिन खतरा बढ़ रहा था। एक रात अमित ने कहा, कल ट्रेजरी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट है। अशफाक हंस पड़ा, मतलब कल लाठी भी पड़ेगी। आनंद बोला, पड़ेगी तो साथ में पड़ेगी। तीनों हंस दिए, उन्हें क्या पता था ये हंसी धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है। अगले दिन बनारस की सड़कें भर चुकी थी, हजारों लोग, महिलाएं, बच्चे, स्टूडेंट्स, सबके हाथ में तिरंगा। आनंद जोर जोर से चिल्ला रहा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तभी गोरा ऑफिसर आया और उनपे चिल्लाया, लेकिन भीड़ नहीं हटी। और अगले ही पल लाठी चार्ज, चीखें गूंज उठी, लोग चिल्लाने लगे, लोग भागने लगे। एक सिपाही ने एक बूढ़े आदमी को मारा, अशफाक का खून खौल उठा।

उसने सिपाही को धक्का दे दिया। अमित ने आनंद को खींचकर साइड किया, लेकिन तभी एक लाठी आनंद के सिर पर लगी, खून बहने लगा। हेमा दूर से सब देख रही थी। वो भागकर आनंद तक पहुंची। आनंद बेहोश हो चुका था। उस रात हेमा ने आनंद के सर पर पट्टी बांधते हुए पूछा, तुम पागल हो? आनंद धीरे से हंस पड़ा, हाँ मर जाते तो? हेमा ने सवाल किया। आनंद ने उसका हाथ पकड़ा, तो याद रखना किसी ने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी। और ये सुनते ही हेमा रो पड़ी। हर आंदोलन में एक गद्दार होता था, बनारस में भी था। किसी ने पुलिस को क्रांतिकारियों के नाम बता दिए, एक एक करके लोग उठाए जाने लगे। एक रात अमित भागते हुए आया, पुलिस को हमारे अड्डे का पता चल गया है, तीनों तुरंत वहां से निकलो। लेकिन तभी गोलियों की आवाज गूंजी, पुलिस पहुंच चुकी थी। सब भागने लगे, अशफाक पीछे रह गया। एक सिपाही ने उस पर बंदूक तानी, तभी आनंद उसके सामने आ गया, भागो अशफाक, गोली चली। आनंद बच गया, लेकिन उसके कंधे को छू गई गोली। तीनों मुश्किल से बच निकले। उस रात पहली बार तीनों को महसूस हुआ, मौत अब बहुत पास आ चुकी है। हेमा के पिता को आनंद और उसके क्रांतिकारी होने का पता चल गया था। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। हेमा ने पूछा, क्यों? क्योंकि वो जिंदा नहीं बचेगा हेमा। लेकिन हेमा ने उस वक्त जवाब दिया, जो देश के लिए जीता है उससे प्यार करना गुनाह नहीं है पिताजी। उसके पिता ने हेमा को थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन हेमा चुप नहीं रही। वो उस रात आनंद से दोबारा मिली और उसने कहा, आनंद शायद घर वाले मेरी शादी कहीं और कर दें। आनंद कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं लौटकर ना आया तो? हेमा की सांसें रुक गई। ऐसी बात मत करो आनंद, आनंद ने धीरे से कहा, क्रांति में लोग कहानियां नहीं लाशें बनकर लौटते हैं। हेमा ने उसकी होठों पर उंगली रख दी, तुम लौटोगे। लेकिन दोनों जानते थे शायद ये झूठ है। एक रेड में अमित पकड़ा गया, पुलिस उसके घसीटकर जेल ले गई। उसके घर में मातम सा छा गया। मां पुलिस स्टेशन के बाहर रोती रही, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निर्दोष है। लेकिन अंग्रेजों को इंसानियत से मतलब नहीं था। जेल में अमित को पीटा गया, नाम बताओ, किसके कहने पर काम करते हो? लेकिन अमित चुप रहा। एक गोरा ऑफिसर ने उसके मुंह पर पानी फेंका, तुम लोग कभी नहीं जीतोगे। अमित खून थूकते हुए हंस पड़ा, फिर इतना डरते क्यों हो हमसे? ऑफिसर ने उसे और मारा। बाहर आनंद और अशफाक अमित को छुड़ाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अमित ने जेल के अंदर ही फैसला कर लिया था, वो टूटेगा नहीं चाहे जान क्यों ना चली जाए। बनारस में क्रांतिकारी एक्टिविटीज अब और ज्यादा तेज हो गई थी। आनंद अंडरग्राउंड काम कर रहा था और अशफाक बॉम्ब बनाने वाले ग्रुप के कॉन्टेक्ट में आ गया था। अमित जेल से छूटकर और ज्यादा खतरनाक बन चुका था। अब तीनों दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, वो अंग्रेजों के लिए नाइटमेयर बन चुके थे। एक दिन अशफाक ने हंसकर कहा, अगर हम बच गए ना तो आजादी के बाद साथ में दुकान खोलेंगे। अमित हंसा, तू हिसाब रखेगा? नहीं, मैं ग्राहकों से लड़ूंगा। तीनों जोर से हंस पड़े, लेकिन हंसी के पीछे सच छुपा था। उनमें से किसी को यकीन नहीं था कि वो जिंदा बचेंगे, पर वो हमेशा जिंदा दिल रहना जानते थे, हमेशा हंसना जानते थे, हमेशा अपने देश के लिए जान देने के लिए खड़े रहते थे। उन तीनों के दिल में, उन तीनों के जहन में महज
एक ही सपना था, एक ही मिशन था, और वो था आजादी।

ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों आचार्य 90 FM में। आप सुन रहे थे कहानियों की गुल्लक और इसमें कहानी चल रही थी हमारी तीन दोस्तों की। जैसे कि पहले हिस्से में आपने सुना कि कैसे तीन दोस्त तीन अलग कहानियां तीन अलग जिंदगियां जी रहे थे, लेकिन तीनों का मकसद एक ही था, आजादी। और अब धीरे धीरे वो आजादी इस तरह बढ़ चुकी थी कि आनंद अमित और अशफाक को सिवाय आजादी के दूसरा कुछ नजर नहीं आ रहा था। और वो तीनों अपने अपने तरीके से प्लान बनाने लगे थे, प्लान जिससे देश को आजादी मिल सके, युवाओं के दिल में आजादी के लिए जोश जग उठे। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी किस मोड़ पर जाएगी। बनारस में ब्रिटिश ट्रेन आने वाली थी। क्रांतिकारियों ने प्लान बनाया, ट्रेन को उड़ाना है। ये मिशन बहुत डेंजरस था और इस मिशन के लिए तीन नाम चुने गए थे, आनंद, अशफाक और अमित। रात को तीनों घाट पर मिले, चांद आधा था, हवा में अजीब सा सन्नाटा था। आनंद ने धीरे से पूछा, डर लग रहा है? अशफाक बोला, मरने से नहीं। अमित ने पूछा, तो? अशफाक ने आसमान देखा, बस अम्मी अकेली रह जाएगी। सब चुप हो गए। फिर आनंद बोला, हिमा। अमित ने उसका कांधा दबाया और फिर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ही बात थी, अगर हम गिरे तो हिंदुस्तान उठना चाहिए। रात के 2 बजे ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही थी। तीनों ने एक्सप्लोसिव लगा दिए, लेकिन किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, गोलियां चलने लगी, भागो, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अशफाक ने ट्रिगर एक्टिवेट किया, एक्सप्लोशन हुआ, ट्रेन के डब्बे हवा में उड़ गए, ब्रिटिश एम्यूनिशन जल उठा, लेकिन उसी वक्त एक गोली अशफाक के सीने में लगी। अशफाक, आनंद उसकी तरफ भागा, अशफाक जमीन पर गिर चुका था। उसने मुश्किल से कहा, अम्मी से कहना बेटा डरा नहीं। उसकी सांसें रुक गई। आनंद चीख पड़ा, तभी अमित को भी गोली लगी, वो घुटनों पर गिर गया। आनंद भाग, आनंद कह रहा था नहीं। अमित हंसा, देश पहले आनंद, आनंद भाग। और उसका सर एक तरफ झुक गया। आनंद की आंखों के सामने दोनों दोस्त मर चुके थे। पुलिस पास आ रही थी। आनंद ने तिरंगा उठाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गोलियों की बारिश हुई और आनंद भी मिट्टी पर गिर गया। उसके हाथ में तिरंगा था, आंखों में हेमा थी और होठों पर आजादी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया। हर गली में जश्न था, तिरंगा लहरा था, तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन बनारस के एक कोने में तीन माएं रो रही थी। अशफाक की अम्मी ने उसकी तस्वीर छाती से लगा कर रखी थी।
अमित के छोटे भाई फौज में भर्ती हो गए थे और हेमा हेमा ने तो कभी शादी ही नहीं की। वो हर साल 15 अगस्त को घाट पर जाती, 3 दिए जलाती और धीरे से कहती, तुम तीनों जीत गए। हवा धीरे से चलती जैसे कहीं दूर से 3 आवाजें आ रही हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो दोस्तों इसी के साथ होता है इस कहानी का अंत। हम सुन रहे थे 3 रंग 1 खून 1 आजादी की दास्तां, जिसमें हमने सुना, हमने जाना कि कैसे 3 दोस्तों के लिए सिर्फ आजादी ही सब कुछ था, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग से ही कहते हैं कि आजादी के लिए जो उस समय लोग थे वो बहुत पागल थे, जो अपनी जान देने के लिए, जो अपने वतन पे मर मिटने के लिए तैयार रहता है वो एक पागल ही होता है। वतन से प्यार करने वाले की प्यार की सीमा, प्यार की हद इस कदर सारी हदें पार कर देती है कि फिर उस व्यक्ति के लिए कोई हद नहीं रहती। और इसी हद को पार कर चुके थे 3 दोस्त, अमन, अशफाक और अमित। और तीनों ने बिना हिचकिचाए, बिना कोई संकोच किए, बिना किसी डर के हंसकर शहीद हो गए, हंसकर मौत को स्वीकारा। ना ब्रिटिशों के आगे झुके, ना उनकी गोलियों के आगे झुके, जमीन पर गिर गए, छातियों पर गोलियां खाते रहे, पर दिल में एक ही सपना जिंदा रखे, आजादी। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों हम सुन रहे थे ये कहानी, एंड आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्री इंडिपेंडेंस एरा में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो न जाने किसी शहर में, किसी गली में, किसी गांव में, हर एक जगह से न जाने सैकड़ों हजारों कहानियां उस समय बनी होंगी। कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे पहलू हमेशा लाते रहे और आपके दिल को छूते रहे। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर विदा लेता हूँ आपसे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।

अजयरिन इंडिया एफएम के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? सब चंगा? भाई सबको ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि आचार्य 90 एफएम के ऑडियंस हमारे खास दोस्त हैं और दोस्तों का ख्याल रखना मतलब स्वाद का जायका बखूबी निभाना है। अर्ज किया है, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू, हम करते हैं ऑडियंस जी आपसे ढेर सारा प्यार, आपके आने से आई स्वाद का जायका शो पर बहार। बारिश की बौछार से भीगा धरती का दामन, हमारे ऑडियंस जी के मौजूदगी से महका आचार्य 90 एफएम का चमन। भाई आम वाला खास मौसम तो फिलहाल चल ही रहा है, आम के साथ मार्केट में लीची भी पधारी है। हम यूजुअली आम और लीची को अलग अलग खाते हैं, राइट? लेकिन हमारी आज की रेसिपी इन दोनों को मिलाकर बनने वाली है। आम के शौकीनों के लिए गर्मियों का सीजन मींस मैंगो की वैरायटीज को आजमाने का मौसम होता है। रिफ्रेशिंग मैंगो ड्रिंक से लेकर नए नए स्नैक्स और टेस्टी मिठाइयाँ, भाई लिस्ट तो बढ़ती ही रहेगी। हमारी आज की रेसिपी मैंगो और लीची का फ्यूजन है, जिसके पहले निवाले में ही आप इसके दीवाने हो जाएंगे। लंच या डिनर पार्टी में परोसने के लिए ये एक शानदार मिठाई है और इस शानदार मिठाई का नाम है मैंगो स्टफ लीची। मैंगो स्टफ लीची बनाने में बेहद आसान है और आपकी स्वीट क्रेविंग को ये तुरंत शांत कर देगी। तो चलिए अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। मैंगो स्टफ लीची बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: पूरी तरह से पकी हुई लाल लीची 15 या 20, गाढ़ा दूध आधा लीटर, फिर हमें चाहिए नींबू का रस 2 चम्मच, मिश्री पाउडर मींस खड़ी साखर का पाउडर 4 चम्मच, ताजे और पके हुए आम 2, इलायची पाउडर आधा चम्मच, सोक्ड पिस्ता 5 से 6, केसर के धागे 7-8, और एक जरूरी इंग्रेडिएंट मतलब ढेर सारा प्यार भी चाहिए, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में जरूर उतरेंगी। रेसिपी को शुरू करने से पहले हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप आम को पानी में भिगोकर रख दीजिए। लगभग 1 से 2 घंटे के लिए हमें आम को पानी में भिगोना है। ऐसा करने से आम के अंदर की हीट थोड़ी सी रिड्यूस होगी। लगभग 1 घंटे के बाद आप आम का छिलका हटाइए, फिर आम की गुठली को भी हटाइए। इस मैंगो पल्प मींस आम के गूदे को चर्नर की मदद से स्मूथ बनाइए। ऐसा करने से मैंगो पल्प में से गुठलियां निकल जाएंगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। मोटे बेस वाले एक बर्तन में हमें दूध को उबालना है। जैसे ही दूध उबलने लगे हम उसमें नींबू का रस डालेंगे। अब 1 चम्मच की मदद से नींबू के रस को दूध में अच्छे से मिक्स कीजिए। ऐसा करने से दूध फट जाएगा और छेना मींस ताजा पनीर तैयार हो जाएगा। जब उस फटे हुए दूध से सॉलिड और लिक्विड पार्ट सेपरेट हो जाए, तब एक साफ और सूती कपड़े से हमें उसे छान लेना है। आप चाहें तो छलनी की मदद से छेना और मट्ठा को अलग कर सकते हैं। उसके बाद छेना मींस ताजे बने हुए पनीर से आप पानी को निचोड़ लीजिए। बचे हुए ताजे छेना को अपनी हथेलियों से गूंथकर एकदम सॉफ्ट बनाइए। माय गॉड, इतनी तैयारी करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक। तब तक आप एक गाना सुनिए।

ब्रेक के बाद हमारे प्यारे ऑडियंस का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। स्मूथ मैंगो पल्प और सॉफ्ट ताजा ताजा छेना अब हो गया है तैयार और मैंगो स्टफ लीची बनाने हम नहीं कर सकते और ज्यादा इंतजार। अब सॉफ्ट छेना मीन्स गूंद कर रखे हुए पनीर में हम ऐड करेंगे मैंगो पल्प। मिश्री मीन्स खड़ी शक्कर को भी हम ऐड करेंगे। खड़ी शक्कर पाउडर फॉर्म में है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें इलायची पाउडर और ढेर सारा प्यार भी ऐड कीजिए। ऐसा करने से इसका स्वाद ज्यादा निखर आएगा। अब हमें क्या करना है तो जनाब, अब हम लेंगे हमारी लीची। सारी लीची को अच्छे से धो लीजिए। फिर हमें लीची का छिलका हटाना है। उसके बाद क्या करें? तो भाई, लीची को सिर्फ एक चीरा मीन्स कट लगाकर उसमें से हमें धीरे से बीज निकालना है। ध्यान रहे कि लीची कहीं फट ना जाए, अदरवाइज उसके अंदर स्टफिंग को भरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब सारी लीची को हमने एक कट लगाकर उसके अंदर से बीज तो निकाल दिए हैं। अब आप लीजिए एक पाइपिंग बैग और उस पाइपिंग बैग में आप मैंगो पल्प और छेना वाला मिश्रण भर दीजिए। यहाँ पर आप चाहे तो अपनी उंगलियों से भी लीची के अंदर स्टफिंग भर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। अब एक एक करके सारी लीची के अंदर स्टफिंग भर दीजिए। अब आगे क्या करें? तो भाई जरा रुकिए, पहले आप सुनिए हमारे शो का अगला गाना। तब तक मैं यूं गई और यूं आई।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। स्टफ्ड मैंगो लीची अब ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन लेकिन लेकिन इसे डेकोरेट करना फिलहाल बाकी है। अब आप लीजिए एक सुंदर सी प्लेट और उस प्लेट में सारी स्टफ लीची को अगल बगल में रख दीजिए। फिर आप सोक्ड पिस्ता के पतले टुकड़ों को उस पे सजाइए, साथ ही केसर के धागों को भी बड़ी नजाकत से डालिए। आप चाहे तो इसे कुछ समय के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं। भाई मुझ में उतना पेशेंस तो है नहीं, इसलिए मैं तो इसे बनते ही अपने मुंह में स्वाहा करूंगी। आहाहा, क्या बात भाई, मजा आ गया। वैसे क्या आप जानते हैं कि लीची में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इससे हमारे बाल और स्किन को पोषण मिलता है। तो अपनी ब्यूटी रेजिम में आप लीची को जरूर शामिल कीजिए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे हमारे बिहार के अलावा झारखंड, उत्तराखंड, बंगाल और असम में भी लीची उगाई जाती है। तो झटपट मार्केट हो आइए और स्टफ मैंगो लीची बनाने के लिए रसीली लीची को अपने घर ले ही आइए। वैसे बिहार की शाही लीची तो वर्ल्ड फेमस है, तो क्यों ना इस वर्ल्ड फेमस लीची से हम स्वीट और टैंगी स्टफ्ड मैंगो लीची को बनाएं और अपने साथ अपनों को भी खिलाएं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अन्न और जल समाप्त हो गया था, जिससे हर तरफ हाहाकार मच गया। तब सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर माता पार्वती की स्तुति की, उसमें देवता भी शामिल थे। जगत कल्याण के लिए माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। भगवान शिव जी ने भी माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी और मिली हुई भिक्षा के माध्यम से धरती पर सभी जीवों में अन्न का बंटवारा किया। इसलिए भोजन के पहले और अंत में माता अन्नपूर्णा का स्मरण करना बेहद शुभ माना जाता है। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। इसलिए हमें अन्न का आदर करना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना ही खाना अपनी थाली में ले और एक्स्ट्रा खाना अपनों के साथ मिल बांटकर खुशी से खाएं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस लीची की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है लीची मैंगो और छेना। लीची उगाने में अव्वल है बिहार, इसका टेस्ट अनोखा सा, खुश हुआ संसार। मैंगो के साथ जब मिल गया छेना, तब चहक सी उठी मेरे मन की मैना। मिश्री की मौजूदगी ने बढ़ाई इसकी मिठास, पिस्ता और केसर से मिठाई बनी खास। जरूर खाकर देखिए ये लाजवाब स्वीट, इसका टेस्ट है ऐसा कि गर्मी को कर दे बीट। लीची के उत्पादन में बिहार है अग्रेसर, और मिठाई को सजाने साथ आया केसर। स्टफ्ड मैंगो लीची का लाजवाब स्वाद जुबान के साथ ही आपके दिल को भी रहेगा याद। अपनों संग बांटो होम मेड मिठाई, अपनापन जताकर करो दोस्ती की कमाई। आचार्य 90 FM मीन्स योर ओन रेडियो, स्वाद का जायका निभाती हूँ फ्रॉम अवर स्टूडियो। मिलती रहूंगी आपसे हर सोमवार और शुक्रवार, स्वाद का जायका लाएगा आपके किचन में बहार। हमें इंतजार है आर है आपकी रेसिपीज का, सुन रहे हैं ना ऑडियंस, सराहना होगी आपकी भी।

अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। इस रेसिपी का नाम है लीची पुदीना शिकंजी। शिकंजी एक फेमस और रिफ्रेशिंग भारतीय पेय है। ये ऑर्डिनरी नींबू पानी से अलग होता है क्योंकि इसमें नींबू और चीनी के साथ साथ कई खास मसालों का इस्तेमाल किया जाता है जो इसे खट्टा मीठा और चटपटा बनाते हैं। यूपी में गर्मियों के सीजन में गर्म हवा मींस लू से बचने के लिए और इंस्टेंट एनर्जी को पाने के लिए शिकंजी को एज अ देसी एनर्जी ड्रिंक इस्तेमाल किया जाता है। शिकंजी पीने से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम दूर होती है, साथ ही हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इसे ज्यादातर दोपहर के टाइम में पीना अच्छा माना जाता है। तो चलिए अब हम लीची पुदीना शिकंजी बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। लीची पुदीना शिकंजी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: फ्रेश और पूरी तरह से पकी हुई लीची 8 से 10, पानी 2 ग्लास, पीसी हुई चीनी 2 बड़े चम्मच, काला नमक 1/2 चम्मच या स्वादानुसार, भुना हुआ

जीरा पाउडर पाव चम्मच, नींबू एक, पुदीना 10-12 पत्ते, बर्फ 6 टुकड़े, ये ऑप्शनल है। अब हम इसे बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले हम लीची को अच्छे से धो लेंगे, फिर हम लीची का छिलका और अंदर का बीज भी हटाएंगे। उसके बाद पुदीना के पत्तों को भी साफ पानी से धो लेना है। अब आगे सुनिए। एक ब्लेंडर लीजिए, उस ब्लेंडर में हम डालेंगे छील कर रखी हुई लीची, फिर उस लीची में हम ऐड करेंगे पुदीना के कुछ पत्ते। इससे क्या होगा कि पुदीना का रिफ्रेशिंग टेस्ट इस शिकंजी में स्वाद का जायका ऐड करेगा। अब इसमें डालिए थोड़ा सा पानी, आप चाहे तो इसमें बर्फ के कुछ टुकड़े भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ठंडा चाहिए तो। वैसे मुझे पर्सनली बिना बर्फ वाले मॉकटेल्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे वो कौन सा मॉकटेल है जिसे आप किसी भी सीजन में पीने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं? मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। अब हम आगे की रेसिपी को सुनते हैं। ब्लेंडर में डाली चीजों को हमें अब मिक्स करना है, इसलिए आप इसका ढक्कन लगाकर उसे अच्छे से ब्लेंड कीजिए। अब ब्लेंडर का ढक्कन खोलिए, फिर उसमें बचा हुआ पानी, काला नमक और नींबू का रस, इन सब चीजों को डालिए। साथ ही भुना जीरा पाउडर भी ऐड कीजिए। इसे भी हमें अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। अगर हमने सारा पानी शुरुआत में ही ब्लेंडर में डालकर बाकी चीजों के साथ मिक्स किया तो हमारी लीची पुदीना शिकंजी अच्छे से मिक्स नहीं होगी। पानी एक तरफ और लीची पुदीना के टुकड़े दूसरी तरफ, ऐसी टाइटैनिक स्टाइल शिकंजी हमें उस ब्लेंडर में दिखाई देगी, इसलिए बी केयरफुल। हड़बड़ी में ऐसा कुछ भी ना करें जिससे हमारा आसान सा काम मुश्किल में बदल जाए। अब हमारी लीची पुदीना शिकंजी सर्व करने के लिए तैयार है और इसका लुफ्त उठाने हम कब से बेकरार है। लेकिन लेकिन लेकिन अभी डेकोरेशन वाला पार्ट बाकी है। इसके लिए हमें चाहिए दो लंबे वाले कांच के ग्लास। एक प्लेट में आप लीजिए 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच शक्कर। फिर क्या करें? तो भाई उन ग्लास के किनारों को थोड़ा पानी लगाकर उन्हें उस नमक और शक्कर वाली प्लेट पर पलट दीजिए। ऐसा करने से ग्लास के किनारों पर क्रिस्टल लेयर बनेगी जो हमारी लीची पुदीना शिकंजी को प्रोफेशनल लुक देगी। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? अब हम उन ग्लास को सीधा खड़ा करेंगे, फिर एकदम संभाल कर एक नजाकत से तैयार शिकंजी को उन ग्लास में डालना है। इसे और सुंदर बनाने के लिए उस शिकंजी पर पुदीना के 2-3 पत्ते रख दीजिए। क्या बात! फिर अपने मोबाइल कैमरा में इस लीची पुदीना शिकंजी की छवि को कैप्चर कीजिए। उसके बाद अपनों के साथ बैठकर एकदम आराम से इस लीची पुदीना शिकंजी का लुफ्त उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस लीची पुदीना शिकंजी के लिए पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है तसल्ली वाली शिकंजी। झुलसती सी गर्मी में हमें देने तसल्ली, घर में बननी ही चाहिए लीची पुदीना शिकंजी। लीची और पुदीना का ये रिफ्रेशिंग कॉम्बिनेशन, मतलब शिकंजी के रूप में गर्मी भगाने वाला इनोवेशन। तेज गर्मी को जब देनी हो मात, तब हम थामेंगे देसी नुस्खे का हाथ। आसान से देसी नुस्खे हमें देंगे जोश, लीची पुदीना शिकंजी पीकर होंगे आप मदहोश। हमारे देसी खाने में है सेहत से जुड़े कई राज। आचार्य 90 FM के ऑडियंस जी, क्या आप सुन ले हम कुछ साज़?

आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। भाई मौसम को बदलते देर नहीं लगती, झुलसती गर्मी वाला मौसम बस अब बदलने ही वाला है और फिर रेनी सीजन स्पेशल रेसिपीज को हमें बनाना है। मौसम के अलग अलग रूपों को एंजॉय करने के लिए लोकल सीजनल और ट्रेडिशनल खाना हमें जरूर खाना चाहिए और उस टेस्टी खाने के साथ कुछ सुरीले साज भी बजने ही चाहिए। इसलिए आचार्य 90 FM इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज शुरुआत में हमने बनाई स्टफ्ड मैंगो लीची, जिसमें छेना मींस फ्रेश पनीर और मैंगो पल्प को लीची के अंदर भरकर हमने एक लजीज मिठाई बनाई। स्टफ्ड मैंगो लीची का रूप निखारने के लिए हमने उस पर पिस्ता और केसर वाला डेकोरेशन भी किया। किया कि नहीं? जी जरूर किया। उसके बाद हमने बनाई यूपी की फेमस शिकंजी, जिसका नाम था लीची पुदीना शिकंजी। रसीली लीची और पुदीना की परफेक्ट जोड़ी से हमने इस गर्मी के मौसम को थोड़ा सा इजी बनाने की कामयाब कोशिश की है कि नहीं? अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज हैं, तो हमें जरूर लिखिए और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना हो तो वो भी हमें जरूर बताइए। हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है और हर नई शुरुआत से एक कहानी शुरू होती है। कहानी और रेसिपी का ये संगम अनोखा, मतलब स्वाद और जायके का मिलाप मींस सलोखा। बेसब्री से कीजिए आप सोमवार और शुक्रवार का इंतजार। आपके संग रेसिपीज को शेयर करने हम हैं एकदम बेकरार। खाने और गाने का ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि आप और हम हैं लजीज खाने के शौकीन और हमारे दोबारा मिलने का मुझे है पूरा यकीन। अगली बार कुछ और इंटरेस्टिंग रेसिपीज लेकर हम आपसे दोबारा मिलेंगे। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आपसे दोबारा मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। आरजे भारतीय सीमा की तरफ से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

अजय एंड NDFM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आज भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड ना? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और एकदम इत्मीनान से हमारे इस शो को सुन रहे हैं। अर्ज किया है, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तप मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आपके आने से ऑडियंस जी यूं लगा जैसे दिल के दर्द को कुछ दवा मिल गई। बढ़ रहे थे हम अपनी मंजिल को ढूंढने, यूं ही कुछ अकेले, आपका साथ पाकर दूर हुए घनघोर से अंधेरे। बहुत मायने रखती है आपकी मौजूदगी, आपकी आहट से खिल उठी सादगी। आपको याद होगा कि पिछली बार हमने सोल को खुश करने वाली सोल कड़ी को बनाया था, उसमें कोकम और नारियल का दूध इनका इस्तेमाल करके हमने इस पिंक कोकम कड़ी को बनाया था। इस बार हम बनाने वाले हैं कैरीची कड़ी। वैसे कोंकण का नाम सुनकर हमें याद आता है हरियाली से खचाखच भरा हुआ नेचर, राइट? ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़, घनी झाड़ियाँ और गर्मियों के मौसम में हर घर में महकने वाली कैरी मींस कच्चे आम की खुशबू। जब गर्मियों से हाल हो बेहाल और बनाना हो खाना कुछ मजेदार, तब हमारी कोंकणी लेडीज के किचन में बनती है कुछ चटपटी रेसिपीज। कच्चा आम मतलब कैरी से सिर्फ अचार और चटनी ही नहीं बनती, ताजे नारियल का दूध, कच्चे आम का गूदा मींस पल्प और साथ ही गुड़ की मिठास, इन सब के अनोखे संगम से बनती है कैरी मींस कच्चे आम की खट्टी मीठी कढ़ी। गर्मा गर्म आंबे मोहर चावल और उसके साथ ये खट्टी मीठी कच्चे आम की कढ़ी, ये जुगलबंदी किसी भी शाही पकवान को टक्कर देने की काबिलियत रखती है। अब हम सुनते हैं कि कोंकणी फूडीज की मनपसंद ये कच्चे आम की कढ़ी बनाते कैसे हैं। कच्चा आम मींस कैरीची कढ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बड़ी सी कैरी एक, ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट मतलब कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल दो बड़ी कटोरी, ब्राउन गुड़ एक बड़ा चम्मच। यहाँ पर हम ब्राउन गुड़ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि येल्लो गुड़ केमिकल वाला होता है। नमक स्वादानुसार, यहाँ पर मैं लगभग एक चम्मच नमक ले रही हूँ। इसके अलावा हमें चाहिए एक चम्मच भर के अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। तड़का मींस वघार के लिए हमें चाहिए नारियल का तेल दो बड़े चम्मच, सरसों मींस राई एक छोटा चम्मच, मेथी दाना पाव चम्मच, सूखी लाल मिर्च एक या दो, हींग चुटकी भर, गार्निश के लिए बारीक कटी हुई कोथमीर मींस हरा धनिया और मेन इंग्रेडिएंट ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। अब हम कैरीची कढ़ी बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। इसे शुरू करने से पहले हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप कैरी मींस कच्चा आम अच्छे से धो लीजिए। उसे धो लेने के बाद प्रेशर कुकर में इसे बॉईल करना है। लगभग 20 मिनट में कच्चा आम अच्छे से बॉईल हो जाएगा, फिर उसे ठंडा होने दीजिए। लगभग 15-20 मिनट के बाद उस बॉइल्ड कैरी का छिलका हटाइए। यहाँ पर आप पीलर को यूज कर सकते हैं। फिर अपने हाथों से आप इस कैरी का गूदा मींस पल्प निकालिए। फिर मिक्सर के एक जार में ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट और कैरी का पल्प एक साथ डालिए। फिर लगभग एक या दो मिनट तक मिक्सर को चलाइए। फिर इस मिश्रण में डालिए एक ग्लास पानी और इसे एक मिनट तक दोबारा मिक्सर में मिक्स कीजिए। अब इस मिश्रण को हमें छान लेना है, मींस सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करना है। इसके लिए आप सूती कपड़ा यूज कर सकते हैं। इतना सारा काम करके हम तो थक गए भाई साहब, आई नीड अ ब्रेक।

तैयार पेस्ट अच्छे से मिक्स कीजिए। उसके बाद स्वाद के अनुसार उसमें थोड़ा नमक मिक्स कीजिए। फिर हमें ऐड करना है हेल्दी ब्राउन गुड और ढेर सारा प्यार। इन सब को चम्मच की मदद से आप मिक्स कीजिए। फिर हमें इस मिश्रण में तड़का लगाना है। इसके लिए एक छोटे पैन में कोकोनट ऑयल को लो फ्लेम पर गरम कीजिए। अगर गलती से आपका कोकोनट ऑयल ज्यादा गर्म होकर धुआंधार हो गया, मींस अगर वो जल गया, तो उसे यूज मत कीजिए। दोबारा से नारियल का तेल गर्म करना उचित होगा। फिर उसमें डालिए सरसों, मींस मस्टर्ड सीड्स। सरसों को चटकने दीजिए। फिर उसमें डालिए मेथी दाना, सूखी लाल मिर्ची। फाइनली थोड़ा सा हींग भी ऐड कीजिए। फिर इस तैयार तड़के को बड़ी नजाकत से कैरी और नारियल वाले लिक्विड में डाल दीजिए। क्या बात! अब चम्मच की मदद से इस तड़के को कैरी की कड़ी में मिक्स कीजिए। इसे गार्निश करने के लिए इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालिए। इस प्रकार हमारी कैरी की कड़ी परोसने के लिए हो गई है तैयार। गर्मा गर्म चावल के साथ आप इस कैरी की कड़ी का लुत्फ़ उठाइए। इस बात पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक, तब तक आप एक गाना सुनिए।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य नटी एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस कैरी की कढ़ी की खिदमत में पेश है एक कविता। कविता का नाम है कैरी की कढ़ी। खट्टे मीठे स्वाद वाली कैरी की कढ़ी, इसे टेस्ट करने की मुझे है जल्दी बड़ी। गर्मी को देनी है अगर आपको मात, तब स्वाद का जायका निभाएगा आप सबका साथ। नारियल और कैरी का जायकेदार मेल, मींस गर्मी को हराने वाला स्वादिष्ट सा खेल। स्वाद का जायका निभाने का किया था आपसे वादा, इस खाने खिलाने की बात को हम ना छोड़ेंगे आधा। विभिन्न प्रकार का है हमारा देसी फूड, हर मौके पर हाजिर बदलने आपका मूड। खाना और गाना ये हमारे शो की जान, खिलाकर देसी खाना बढ़ाइए भारतीय होने का मान। सोमवार और शुक्रवार को निभाने स्वाद का जायका, जरूर हाजिर होगी इस शो की नायिका। अपनों संग बांटिए ढेर सारी खुशियाँ, भारतीय भोजन ही बने सेहत का मुखिया। होममेड खाने का भगवान को लगाकर भोग, सेहत की तंदुरुस्ती का जुड़ जाए संयोग। आप सुन रहे हैं आचार्य नटी एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। करी की खट्टी मीठी कढ़ी बनाकर हमने गर्मी के सीजन का इलाज तो सुन लिया है, लेकिन लेकिन लेकिन मुझ जैसे मिठाई के फैन के लिए कुछ मीठा हो जाए। जी हाँ, जरूर हो जाए। क्या हम सीजनल फ्रूट्स को इस्तेमाल करके कोई मिठाई बना सकते हैं? एक ऐसी मिठाई जो दिखने में हो एकदम सुंदर और टेस्ट में हो अति सुंदर, जिसका टेक्सचर हो स्मूथ और मुंह में डालते ही हम फील करें सुपर कूल, जिसमें इस्तेमाल हो दही जो गर्मी को मात देने के लिए हो एकदम सही, जिसका रंग हो पर्पल और इसे दोबारा खाने का आपका मन हो हर पल, जिसे एक बार खाने से ना भरे जिया और घर वाले करे तारीफ तुमने तो कमाल किया। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ पर्पल कलर वाले जामुनी श्रीखंड की। फ्रूट श्रीखंड और आम्रखंड तो हमने बनाया था, तो क्यों ना इस बार बैंगनी रंग का जामुनी श्रीखंड बनाया जाए। समर सीजन में चटपटे से बेर हर जगह मिलते हैं। इंडियन ब्लैकबेरी नाम से जाना जाने वाला ये फल खट्टा मीठा और कसेला होता है। कसेला मीन्स तुरट टेस्ट। जामुन खाने से स्किन और हार्ट को फायदा मिलता है, इसलिए समर स्पेशल ब्यूटी रेजिम में आप इसे जरूर शामिल कीजिए। हमारी आज की नेक्स्ट रेसिपी अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट में बनने वाली भारतीय मिठाई है। ताजे दही से बना चक्का मींस हंग कर्ड और जामुन के पल्प से इसे बनाकर आप गर्मी से थोड़ी राहत पा सकते हैं। जामुन श्रीखंड की रेसिपी को सुनने से पहले हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं भी मत जाइए, मैं यू गई और यू आई। स्टे ट्यून्ड।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। जामुन श्रीखंड बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: ताजा दही आधा किलो, पके हुए जामुन 2 कटोरी, चीनी स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेटली आधा कप चीनी ले रही हूँ। इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच, केसर के धागे, इन्हें 1 चम्मच दूध में भिगोकर रखना है लगभग 7 से 8। मिल्क मसाला 2 बड़े चम्मच या सोक ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, पिस्ता, काजू सब 2-2। अब हम पहले थोड़ी तैयारी करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मलमल या सूती कपड़ा रखें। इसमें दही डालें, फिर उस कपड़े को चारों तरफ से उठाकर बांध लें। इसे ओवरनाइट या 5-6 घंटे तक लटका कर रखें। ऐसा करने से दही में से पानी मींस मट्ठा निकल जाएगा और उस कपड़े में बचेगा गाढ़ा और क्रीमी दही मींस फ्रेश चक्का। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सारे जामुन को अच्छे से धो लीजिए, फिर उन्हें साफ कपड़े से पोंछकर उसमें से बीज निकालिए। बाद में इस जामुन के गूदे को मिक्सर के जार में डालिए। हमें बिना पानी यूज किए इसका पेस्ट बनाना है। फिर क्या करें? तो भाई, सबसे पहले उस ताजे हंग कर्ड मींस चक्का में शक्कर को मिलाइए। विस्कर की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर इसमें जामुन का पल्प डालकर दोबारा मिक्स कीजिए। आखिर में भिगोया हुआ केसर और इलायची पाउडर डालकर एक और बार विस्कर से मिक्स कीजिए। अब इस पर्पल मींस बैंगनी रंग वाले श्रीखंड को एक सुंदर से बोल में ट्रांसफर कीजिए। अब हमें इसे डेकोरेट करना है। आप चाहें तो मिल्क मसाला को इस जामुनी श्रीखंड पर छिड़क सकते हैं, या फिर कटे हुए सोक ड्राई फ्रूट से आप फूलों वाला डिजाइन बनाकर इसकी खूबसूरती को और बढ़ा सकते हैं। अब इसकी सात्विकता को बढ़ाने के लिए भगवान को इस जामुनी श्रीखंड का भोग आप जरूर लगाइए। फाइनली अपनी उंगलियों से ही इस यमी और टेस्टी जामुनी श्रीखंड का लुत्फ उठाइए। श्रीखंड खाकर मेरे दिल का मोगैम्बो तो एकदम खुश हुआ। व्हाट अबाउट यू ऑडियंस जी? यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी।

भारत के इतिहास और पौराणिक कथाओं से गहरा नाता है। इसी वजह से प्राचीन ग्रंथों में भारत देश को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। जम्बूद्वीप मीन्स जामुन का देश। हिंदू धर्म के अनुसार जामुन के पेड़ को बहुत पवित्र माना जाता है। मधुमेह मीन्स डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए जामुन का सेवन फायदेमंद होता है। वैसे आपने लास्ट टाइम जामुन कब खाए थे? याद नहीं? माय गॉड, फिर तो आप जामुन खरीदकर तुरंत घर ले आइए और जामुन श्रीखंड बनाकर इस सीजन को खास बनाइए। स्वाद का जायका इस शो के आने वाले एपिसोड्स में हम बात करेंगे कुछ लोकल, सीजनल और ट्रेडिशनल खाने की। हमारे स्वाद का जायका इस शो पर बनने वाली रेसिपीज को आप नीचे जमीन पर बैठकर अपने साफ और धुले हाथों से ही खाने का प्रयास कीजिए। हमारे हाथों की 5 उंगलियां 5 तत्व मीन्स 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। अपने हाथों से खाना खाकर हम इन 5 एलिमेंट्स को एक साथ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 तत्व हमारे हाथों की उंगलियों पर मौजूद होते हैं। अपने हाथों से खाना खाकर हम हमारी भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ाते हैं। थाली में परोसे हुए खाने को अपने आँखों से देखकर हम एक्साइट हो जाते हैं। अपने हाथों से उस खाने का निवाला उठाकर हम उसका टेक्सचर और टेम्परेचर फील करते हैं। फिर उसकी महक को आजमाते हुए हम खाना खाते हैं। चम्मच से खाना खाकर दूसरे हाथ से मोबाइल फोन ऑपरेट करना, ये हमारी संस्कृति बिल्कुल नहीं है। ऐसा करना मीन्स अन्न का अनादर करने वाली बात है, है कि नहीं? अब हम लेते हैं एक क्विक रिकैप। आज सबसे पहले हमने बनाई कच्चे आम की मीन्स कैरीची कढ़ी। ताजा नारियल, उबला हुआ कच्चा आम और गुड़ को कुछ मसालों के साथ मिलाकर हमने कोंकण स्पेशल कैरीची कढ़ी बनाई। इसकी रेसिपी को सुनकर हमारे कोंकणी ऑडियंस जरूर नॉस्टैल्जिक फील कर रहे होंगे। ताजे और गर्मा गर्म चावल के साथ इस कैरीची कढ़ी को खाना मीन्स किसी पकवान का लुफ्त उठाने जैसे ही है। फिर हमने बनाई एक मिठाई, चक्का मतलब हंकर्ड और ताजा जामुन। इनसे बनी इस बैंगनी रंग के श्रीखंड ने गर्मी के मौसम को थोड़ा आसान बनाने की कामयाब कोशिश की। वैसे श्रीखंड के अलग अलग फ्लेवर्स में ये जामुनी श्रीखंड एकदम यूनिक टाइप का फ्लेवर है, है कि नहीं? भाई खाने और खिलाने का ये रंगीन किस्सा तो चलता ही रहेगा। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर लिखिए। और अगर आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो वो भी हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन उसके पहले आपके फेवरेट आचार्य 90 FM चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसा करने से हमारी दोस्ती एकदम पक्की होगी। अर्ज किया है ऑडियंस जी, आपसे मिलकर लगता है कि मिल गई दुनिया सारी। स्वाद का जायका शो की बात ही है कितनी निराली। सफर ट्रेन का हो या जिंदगी का, खत्म ना हो ये बातें। हर सोमवार और शुक्रवार आपसे होंगी दिलचस्प मुलाकातें। आचार्य 90 FM का हर शो है एकदम खास, लेकिन स्वाद का जायका सुनकर बढ़ाए दोस्ती की मिठास। जाना नहीं चाहती मैं आप सभी को छोड़कर, दोबारा मिलने का ये वादा करती हूँ हाथ जोड़कर। अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं पक्का वादा। आरजे भारतीय सीमा की तरफ से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

अजय 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? इस गर्मी वाले सीजन से कुछ राहत मिली आपको? थोड़ी सी तो मिली ही होगी। वैसे आचार्य 90 FM के प्यारे ऑडियंस से मिलकर हमें तो खुशी ही मिलती है, क्योंकि आप हैं हमारे प्यारे प्यारे दोस्त और दोस्तों से मिलकर होने वाली खुशी का इजहार करना हमें बखूबी आता है। अर्ज किया है, अगर चलती रहूं मैं अपनी मंजिल की ओर तो हो सकती है इनमें से एक बात या तो मिल जाएगी मंजिल, मतलब ऑडियंस का साथ, या फिर यूं ही चलता रहेगा सफर और मिलूंगी आपसे शुक्रवार की शाम और सोमवार की दोपहर, जब साथ होंगे यहाँ ऑडियंस जी आप जैसे हम सफर, तब गर्मी की मार होगी धीरे धीरे बेअसर। स्वाद का जायका निभाने का ये वादा, मनोरंजन से भरपूर और गाने भी ज्यादा, खाने के माध्यम से दिल को लुभाना मींस अपनापन जताकर दोस्ती को निभाना। स्वागत है ऑडियंस जी आपका इस शो पर, नई रेसिपीज को लाई हूँ आप ही के लिए ढूंढ कर। भारतीय सीमा के रसोई वाले राज साथ में बजेंगे सुमधुर और सुरीले साज। हमारी आज की पहली रेसिपी है एक स्पेशल टाइप का लड्डू। इस लड्डू में इस्तेमाल होने वाली एक स्पेशल चीज गर्मी को मात देने के साथ हमारे देसी खाने को खूबसूरत भी बनाएगी। ये गर्मियों में शरीर को ठंडा रखती है, दिखने में मोतियों जैसे है और इसे खाने से लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। इसे पानी में भिगोकर इस्तेमाल किया जाता है। आइसक्रीम, फालूदा और शरबत बनाते समय इसे यूज किया जाता है। जनाब सही पहचाना आपने, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सब्जा की। जब सब्जा को पानी में भिगोकर रखते हैं तब ये फूल कर जेली की तरह बनता है। सब्जा की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आप सब्जा का सेवन हर रोज कीजिए। इससे एसिडिटी कंट्रोल में रहती है और हमारा वेट भी कंट्रोल में रहता है। अब हम इस सब्जा के लड्डू को बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सब्जा के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, सब्जा के बीज 100 ग्राम, नारियल का पानी आवश्यकता के अनुसार, नारियल के पानी में हमें सब्जा के बीज को सोक करना है तो अप्रोक्सीमेटली 3 कटोरी भर के पानी मैं यहाँ ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए ताजा नारियल 1, हेल्दी वाला ब्राउन गुड 200 ग्राम, देसी घी 4 चम्मच, मिल्क मसाला 4 चम्मच या फिर काजू और बादाम 7-8, उसके साथ हमें जरूरत पड़ेगी काला मुनक्का 15 से 20, इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, जायफल पाउडर 1 चुटकी भर। जायफल पाउडर को यूज करना ऑप्शनल है। और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। इसकी रेसिपी को सुनने से पहले हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले एक बड़ी कटोरी लीजिए, फिर उसमें डालिए सब्जा के बीज। हमें सब्जा के बीज को भिगोना है। इसे ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए हम इन्हें नारियल के पानी में सोक करके कुछ टाइम के लिए साइड में रख देंगे। लगभग 2 घंटे तक सब्जा के बीज को नारियल के पानी में भिगोकर हमने रख दिया है। 2-3 घंटे के बाद वो अच्छी तरह से फूल जाएंगे। एक ट्रांसपेरेंट जेली टाइप टेक्सचर आपको जब दिखे तब समझ लीजिए कि बीज अब यूज करने के लिए सब्जा के बीज अब यूज करने के लिए रेडी हो गए हैं। उसके बाद हमें ताजा नारियल कद्दूकस करके लेना है। कद्दूकस मीन्स ग्रेटेड। फिर ब्राउन गुड को बारीक टुकड़ों में काटकर रेडी रखना है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स यूज कर रहे हैं तो उन्हें पतले टुकड़ों में काटकर तैयार रखिए। हे भगवान, इतनी सारी तैयारी करके मैं तो थक गई भाई साहब। अब एक गाना सुनते हैं। आप कहीं भी मत जाइए, मैं यूं गई और यूं आई।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। सब्जा के लड्डू बनाने की तैयारी तो हो गई, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले आप लीजिए एक नॉनस्टिक पैन या बड़ी सी कढ़ाई, फिर इसमें डालिए शुद्ध देसी घी, उसके बाद इसमें ताजा नारियल और गुड़ डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए पकाइए। इसे पकाते समय गैस को लो फ्लेम पर ही रखें, अदरवाइज ये मिश्रण जल सकता है और आपकी मेहनत बेकार ना हो, इसलिए आपको प्रिकॉशन लेनी है। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद इसमें ऐड कीजिए सब्जा के बीज। अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट के बाद ये मिश्रण रेडी हो जाएगा और तब तक इसे अच्छे से पकाते हुए आपको चम्मच चलाते रहना है। गुड़ और नारियल का टेक्सचर जब एक साथ मिलेगा तब इसे टेस्ट करने के लिए आपका मन जरूर लग जाएगा। लेकिन लेकिन लेकिन अभी कर लीजिए थोड़ा इंतजार, क्योंकि सब्जा के लड्डू चखने के लिए हम भी बैठे हैं कब से बेकरार। अब आगे क्या करें तो भाई सुनिए, आगे हमें ये करना है कि इस मिश्रण में ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर और जायफल पाउडर को डालना है। इसे भी मिक्स करते हुए धीमी आंच पर पकाना है। ऐसा करते समय आपका किचन मनमोहक खुशबू से भर जाएगा। फिर आप गैस को बंद कर दीजिए, इस मिश्रण को ठंडा होने दीजिए और तब तक हमें वेट करना है। लड्डू बनाने का मिश्रण अब थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसके लड्डू बनाते हैं। इसके लिए आप एक बड़ी सी प्लेट लीजिए, फिर अपने हाथों पर आप थोड़ा सा घी लगाइए। उसके बाद तैयार मिश्रण से नींबू के साइज के लड्डू को बनाना स्टार्ट कीजिए। फिर एक एक करके सब्जा के सारे लड्डुओं को आप उस प्लेट में रख दीजिए। जब सारे लड्डू तैयार हो जाए तब लगभग एक घंटे तक उन्हें सूखने के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए, या तो आप उन्हें फैन के नीचे भी रख सकते हैं। चूंकि ये लड्डू हमने ताजे नारियल को यूज करके बनाए हैं, इसलिए इन्हें फ्रिज में रखना बेहतर होगा। इन लड्डुओं को एक एयर टाइट कंटेनर में रखकर आप फ्रिज में ही स्टोर कीजिए। वैसे ये सब्जा लड्डू होते हैं इतने टेस्टी कि झटपट खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन फ्रिज में एटलीस्ट एक हफ्ते तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। आपको जब भी इन्हें खाने का मन करे तब आप आधा घंटा पहले इन्हें बाहर निकाल कर रखें। ऐसा करने से इसका ठंडापन कम होकर ये रूम टेम्परेचर वाले हो जाएंगे। इस तरह से हमारे टेस्टी और हेल्दी सब्जा के लड्डू हो गए हैं तैयार। सुबह के नाश्ते में आप इन सब्जा के लड्डुओं को जरूर खाएं। ऐसा करने से आप दिन की शुरुआत एक हेल्दी तरीके से करेंगे। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस सब्जा के लड्डू की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है गोल मटोल लड्डू। गोल मटोल से मीठे लड्डू बनाने डाला सब्जा, इसका टेस्ट है ऐसा अनोखा कि मेरे दिल पर किया कब्जा। जब जब देखूं मैं थाल में भरे ये मीठे मीठे लड्डू, तब सारा डाइटिंग भूलकर इन पर हो जाऊं लट्टू। जब जब हो जाता संगम घी गुड़ और कोकोनट, तब इनका सेवन करके आप जरूर पाएंगे हेल्दी गट। देसी घी और ब्राउन गुड़ देगा इतनी ताकत कि बीमारी रहेगी दूर और ना आएगी कोई आफत। लड्डू में भी छुपे हैं सेहत से जुड़े कुछ राज, हमारे शो में शामिल है रेसिपीज और सुरीले साज। जब होगी ऑडियंस जी किचन में आपकी एंट्री, तब लगाइए आचार्य 90 FM और सुनिए गाने, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री। अब बढ़ते हैं अगली रेसिपी की तरफ। हमारी अगली रेसिपी का नाम है क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल। गर्मी के लिए ये बेहद ताजगी भरा और हाइड्रेटिंग ड्रिंक है। इसे घर पर बनाना एकदम आसान है। खीरा, नींबू, पुदीना डालकर बनाया गया ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक आपको चिलचिलाती धूप में तुरंत ठंडक और एनर्जी देगा। यूजुअली मॉकटेल में ताजे फलों का रस
सिरप, जड़ी बूटियां और सोडा या कार्बोनेटेड पानी का इस्तेमाल किया जाता है। वर्जिन पिनाकोलाडा, वर्जिन मोहितो, स्ट्रॉबेरी लेमनेड और सिंड्रेला, ऐसे कई सारे मॉकटेल्स फेमस हैं। क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल, ये ड्रिंक लैटिन अमेरिकन अगुआ फ्रेस्का और इंडियन खीरा नींबू शिकंजी का लेटेस्ट वर्जन है। वैसे दुनिया भर के कैफे में ये काफी फेमस है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो, और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। क्यूकम्बर मीन्स खीरा, म्हणजे आपली काकड़ी, एक बड़ी सी। नींबू का रस 2 बड़े चम्मच। पुदीने की पत्तियां 10 से 12। चीनी या शहद स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं 2 चम्मच चीनी ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए काला नमक 1 चुटकी, स्प्राइट 2 ग्लास, बर्फ के टुकड़े 4 या 5, ये ऑप्शनल है। अब हम क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले आप ककड़ी को अच्छे से धो लीजिए। फिर आगे क्या? आगे हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हम बना रहे हैं क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल। ककड़ी को हमने अच्छे से धो तो लिया है। इसे यूज करने से पहले आप उस ककड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर उसे टेस्ट कीजिए। अगर उसका टेस्ट कड़वा है तो उसे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि कड़वी ककड़ी मीन्स खराब ककड़ी। हमें नॉर्मल टेस्ट वाली ककड़ी को यूज करना है। फिर उस ककड़ी को आप बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। उसके बाद हमें लेना है मिक्सर का जार। उस जार में हम डालेंगे खीरा मीन्स ककड़ी के टुकड़े और पुदीना के कुछ पत्ते। इसके साथ आधा कप पानी डालकर हमें इसका पेस्ट बनाना है। जब तक ये मिश्रण एकदम स्मूथ ना हो तब तक हमें इसे मिक्सर में पीसना है। इसका स्मूथ पेस्ट बनने के बाद क्या करें? तो भाई अब हमें इसे छानना है। इसके लिए हमें चाहिए एक छलनी। उस छलनी की मदद से इस पेस्ट को हम छान लेते हैं। ऐसा करने से खीरा मीन्स क्यूकम्बर के रेशे अलग हो जाएंगे। फिर उस छाने हुए स्मूथ जूस को हम एक बर्तन में निकालेंगे। अब उसमें मिलाना है नींबू का रस, शक्कर और थोड़ा सा नमक। फिर एक चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लीजिए 2 सर्विंग ग्लास। फिर हमेशा वाला क्रिस्टल डेकोरेशन मीन्स नमक और शक्कर वाला डेकोरेशन करना है। उन ग्लास के किनारों को आप थोड़ा पानी लगाइए। उसके बाद एक छोटी प्लेट में हम लेंगे 1 चम्मच शुगर पाउडर और 1 चम्मच नमक। इस प्लेट में नमक और शक्कर को मिक्स करना है। अब उन गीले किनारों वाले ग्लास को उस प्लेट में पलट दीजिए। उन्हें अपसाइड डाउन करके उस प्लेट में रखिए। फिर एकदम आराम से उन्हें सीधे रखिए। ऐसा करने से ग्लास के किनारों पर क्रिस्टल डेकोरेशन वाला प्रोफेशनल लुक आएगा। उसके बाद क्या करना है तो जनाब अब सुनिए आगे। अब बड़ी नजाकत से उन ग्लास में हम डालेंगे क्यूकम्बर लाइम का जूस। आप चाहे तो सबसे पहले बर्फ के कुछ टुकड़े डालिए और फिर क्यूकम्बर लाइम का जूस डालिए। वैसे मुझे पर्सनली विदाउट आइस वाले मॉकटेल्स ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब उस क्यूकम्बर लाइम जूस के ऊपर हमें डालना है स्प्राइट। फिर इस मिश्रण को 1 चम्मच की मदद से आप मिक्स कीजिए। अब बारी आती है फाइनल टच की। उस ग्लास के किनारों पर हम लगाएंगे नींबू की पतली स्लाइस और उसके साथ रिफ्रेशिंग पुदीना की एक सुंदर सी पत्ती। अब इस क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल की सुंदर छवि को आप कीजिए अपने मोबाइल कैमरा में बंद, क्योंकि इसे टेस्ट करने लम्हे बचे हैं चंद। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। इस क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए आप इसमें चुटकी भर ग्रेटेड अदरक इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज विदाउट जिंजर भी इसका टेस्ट एकदम कमाल का ही होगा। इस तरह हमारा क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल हो गया है एकदम तैयार। और इसे टेस्ट करने के लिए हमारे प्यारे ऑडियंस जी हैं एकदम बेकरार। तो भाई देर किस बात की, झटपट अपने किचन में जाइए और फटाफट से क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल को बनाइए। इस क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है राहत वाला मॉकटेल। झुलसती सी गर्मी से जब पानी हो राहत और ककड़ी को खाने की मुझे हो चाहत, तब क्यों जाए हम कोई रेस्टोरेंट या होटल, घर में ही बनाएंगे टेस्टी और रिफ्रेशिंग मॉकटेल। गर्मी से बेहाल होकर आए जब पसीना, तब ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक मांगे कोई हसीना, उस वक्त जरूर पेश कीजिए अनोखा सा नगीना जिसमें है खीरा और रिफ्रेशिंग पुदीना। खीरा और पुदीना संग डालो थोड़ा स्प्राइट, इसको सिप करके एक्सप्रेशन दो ब्राइट। इसका टेस्ट निखारने डालो थोड़ी सी शक्कर,
क्यूकम्बर पुदीना मॉकटेल गर्मी को देगा टक्कर। ट्रेडिशनल और वेस्टर्न वाले कल्चर का ये मेल, मींस किचन में कलाकारी दिखाने वाला खेल। आपकी उपस्थिति से स्वाद का जायका में आई है बहार। सोमवार और शुक्रवार के इंतजार में भारतीय सीमा हुई बेकरार। इस शो पर बनाएंगे हम टेस्टी टेस्टी खाना। आगे बात होगी और पहले सुनिए अगला गाना।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज के इस शो पर सबसे पहले हमने बनाए हेल्दी वाले सब्जा के लड्डू। अलियु मींस हलीम के लड्डू की रेसिपी से मेल खाने वाले इन लड्डुओं को बनाकर हमने हमारी और हमारे प्यारे ऑडियंस की दोस्ती की मिठास बढ़ाने की एक कामयाब कोशिश की है कि नहीं। जी बिल्कुल की। ताजा नारियल, गुड़, सब्जा के बीज को घी और ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाकर बड़े प्यार से हमने हेल्दी लड्डू बनाए। उसके बाद हमने बनाया वेस्टर्न स्टाइल वाला एक मॉकटेल जिसका नाम था क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल। इसे बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया खीरा मींस ककड़ी, उसके साथ पुदीना और स्प्राइट, जिसने टेम्परेचर को कम करने की दी हाइट। इसे खूबसूरत बनाने के लिए प्रोफेशनल टच देने के लिए हमने नमक और शक्कर को मिक्स करके क्रिस्टल डेकोरेशन भी किया। इस प्रकार से हमने हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए गर्मी सीजन स्पेशल सुपर कूल रेसिपीज को पेश किया। आई होप दैट आपको हमारी आज की रेसिपीज अच्छी ही लगी होगी। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और हमारे आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले हमारे आचार्य 90 FM चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं आपसे मिलती रहूंगी हर सोमवार दोपहर 1 बजे और हर शुक्रवार शाम 4 बजे। अर्ज किया है, जिक्र करते हैं ऑडियंस जी हवा से, अब सोमवार और शुक्रवार आएगा कब? जब भी होती है आपसे मुलाकात तब लगता है ऐसे जैसे धूप में हो बरसात। हमारे इस स्टूडियो में होता है ऐसा दृश्य जैसे आसमान में बिखरा सतरंगी इंद्रधनुष। स्वाद के जायके का म्यूजिकल मेल मींस हेक्टिक स्केड्यूल में मनोरंजन का खेल। सोमवार और शुक्रवार की मुलाकात का ये वादा आरजे भारतीय सीमा कभी ना छोड़ेगी आधा। अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। आपसे दोबारा मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 एफएम में आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज कुछ अलग तरीके से स्टार्ट करेंगे क्योंकि नया महीना और नया मंथ हो, नया दौर हो तो कुछ नई नई चीजें करनी चाहिए। तो वैसे मैंने सोचा कि जून है तो चलो कुछ अलग तरीके से कहानियों की शुरुआत की जाए। उसके पहले कुछ शेर, तो शेर कुछ यूं कहा है कि आज चांद कुछ धीमा चल रहा है, आज चांद कुछ धीमा चल रहा है, शायद वो तेरी गली से गुजर रहा है। आज चांद जरा धीमा चल रहा है, शायद वो तेरी गली से गुजर रहा है। रोशनी बढ़ गई है तेरे मोहल्ले की, रोशनी बढ़ गई है तेरे मोहल्ले की, शायद वो तेरा खिड़की पे इंतजार कर रहा है। आज चांद जरा धीमा चल रहा है, शायद वो तेरी गली से गुजर रहा है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी बहुत प्यारी सी, एकदम ऐसी वाली, क्या कहे कि शब्दों में शायद बयान ना हो, लेकिन फिर भी कोशिश की है शब्दों में बयान करने की। तो कहानी का नाम है दो पुराने चावल। अब आप सोचेंगे दो पुराने चावल, इसका मतलब क्या हुआ? तो यही तो है कहानी का सबसे रोचक तथ्य। तो चलो सुनते हैं दो पुराने चावल। कभी कभी दुनिया को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े नेता या करोड़पति लोग नहीं चाहिए होते। कभी कभी दो पुराने चावल काफी होते हैं। तो दो ऐसे ही दोस्त थे जो 70 साल के, एक दूसरे के साथ हमेशा रहने वाले, हर मौसम हर दौर साथ में जी चुके, साथ में देख चुके, न जाने कितनी बारिश में साथ में भीगे, न जाने कितने धूप में साथ में क्रिकेट खेला, न जाने कितनी बार गिल्ली के साथ डंडे उड़ाए या डंडे के साथ गिल्ली उड़ाई। जो समझ चुके हैं कि इंसान की असली पहचान उसका धर्म नहीं उसका दिल होता है। और ये कहानी है ऐसे ही दो दोस्तों की, कृष्णा शर्मा और अली खान। मुंबई के एक छोटे से गार्डन में एक पुरानी बेंच थी और उस बेंच पर रोज शाम को दो बुजुर्ग बैठते थे, 75 साल के कृष्णा और 75 साल के अली। दोनों की कमर थोड़ी झुक गई थी, चाल धीमी हो गई थी, आंखों पर चश्मा था, एक सफेद कलर का कुर्ता और धोती पहनता तो एक सफेद कलर का कुर्ता और पैजामा पहनता। दोनों घर से निकलने से पहले अक्सर अपना ड्रेस कोड एक दूसरे को बताकर निकलते। हाँ, पर दोनों के पैर में वही पुरानी सी चप्पल, एक हाथ में अखबार एक हाथ में किताब। पर इन सब में एक चीज जो कॉमन थी वो थी उनकी दोस्ती, जो कि अब भी जवान थी। एक दिन दोनों चाय पी रहे थे, मोबाइल पर न्यूज चल रही थी, हर चैनल पर बस एक ही बात, हिंदू मुस्लिम झगड़े नफरत पॉलिटिक्स। अली ने ठंडी सांस भरी, कृष्णा हमने तो ऐसी दुनिया नहीं देखी थी यार। कृष्णा मुस्कुरा दिया, हाँ यार हमारे जमाने में तो

0: कृष्णा, हम दोनों को एक पॉडकास्ट शुरू करना चाहिए। कृष्णा हंस पड़ा। अरे बुड्ढे, पॉडकास्ट क्या होता है पता भी है?
1: बिल्कुल नहीं।
0: दोनों फिर हंस पड़े। फिर इस बार मजाक सच बन गया। अगले हफ्ते कृष्णा का पोता और अली की पोती आए। उन्होंने मोबाइल सेट किया, माइक लगाया और रिकॉर्ड बटन दबा दिया। पॉडकास्ट का नाम रखा दो पुराने चावल और इस पॉडकास्ट की टैगलाइन थी, जब दो दोस्त बात करते हैं तो नफरत की दीवार गिर जाती है। अब जैसे कि पॉडकास्ट शुरू कर दिया तो ये पॉडकास्ट में करेंगे क्या? तो कृष्णा और अली ने डिसाइड किया कि इस पॉडकास्ट में हम वो सारी चीजें करेंगे जिससे शायद इस दुनिया की नफरत खत्म हो, लोग दोस्ती को ज्यादा बढ़ावा दें, लोग दोस्ती को ज्यादा तवज्जो दें, पॉलिटिक्स और आपसी फसाद, आपसी झगड़े से निकलकर लोगों की सोच और आगे बढ़े। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलिए अब कुछ बेहतर करते हैं समाज के लिए, क्योंकि वो अपनी जिंदगी जी चुके थे, अपना जीवन काल वो काट चुके थे। अब उनके दिल में एक ही था कि हमने अब तक कुछ ऐसी असंभव घटना नहीं की या कुछ ऐसी असंभव चीज नहीं की जिससे समाज को बदला जा सके। तो उन्होंने लाया एक पॉडकास्ट, दो पुराने चावल। पॉडकास्ट का पहला एपिसोड बहुत सिंपल था, बस दोनों अपनी बचपन की कहानी सुना रहे थे। कृष्णा बोला, मैं और अली पहली बार स्कूल के बाहर मिले थे। अली हंसकर बोला, झूठ मत बोल, तू मेरा टिफिन चुरा रहा था। अरे भूखा था मैं यार, अभी भी है। दोनों की हंसी रिकॉर्ड हो गई और वो हंसी सुनने वालों के दिल तक जा पहुंची। पर पॉडकास्ट पर सिर्फ 23 व्यू है, लेकिन कमेंट्स उन्होंने सब कुछ बदल दिया। एक कमेंट था, मेरे दादा और नाना भी ऐसे ही दोस्त थे, आज उनकी याद आ गई। दूसरे ने लिखा, आज पहली बार किसी पॉडकास्ट ने मुझे रुला दिया। और यहीं से शुरू हुआ पॉडकास्ट का सिलसिला, कहानियों का सिलसिला, एक ऐसा सफर जो आने वाले वक्त में समाज को बदलने वाला था, जिंदगियों को बदलने वाला था। अली और कृष्णा हर रोज अब पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने लगे थे, ऐसे पॉडकास्ट जिसमें वो अपने बचपन की बातें बताने लगे थे, किस तरीके से अली के घर कृष्णा जाके सेवैया खाता था, या अली किस तरीके से कृष्णा के घर लड्डू खाते थे, कैसे दोनों मिलकर साथ में त्योहार मनाते थे, कैसे एक दूसरे के कपड़े एक्सचेंज करके पहन लिया करते थे। ना तभी कोई बंधन था, ना कोई रुकावट, ना कोई बाउंडेशन, सिर्फ थी तो वो थी मोहब्बत।

शादी, फिर एक में बच्चे, फिर एक में जिंदगी की सबसे बड़ी बड़ी गलतियां जो उनसे हुई। लोग सुनते गए, लोग जुड़ते गए, लोग पॉडकास्ट में खोते गए। धीरे धीरे वो 50 व्यूज, 500, 5000, 50,000 व्यूज कब बन गए दोनों को पता ना चल सका। ये पॉडकास्ट फेमस होने का एक कारण ये भी था कि दोनों के पॉडकास्ट में बनावटी बातों से ज्यादा सच्चाई थी। कृष्णा और अली के चेहरे पे वो साफ नजर आती थी, उन दोनों का वो भोलापन, उन दोनों की वो बातें, उन दोनों की वो गहरी दोस्ती, ये सब धीरे धीरे धीरे धीरे लोगों को सुनने में मजा आने लगा था, देखने में मजा आने लगा था। लेकिन एक दिन पॉडकास्ट पे एक ऐसी कहानी सुनाई गई, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हुआ वो पता चलेगा आपको ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त RJ शब्बीर। स्टे ट्यून्ड।

ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आपका कहानियों की गुल्लक में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर आपको कहानी सुना रहा था दो पुराने चावल अली और कृष्णा की, कि कैसे दोनों ने डिसाइड किया कि अब उम्र बीत चुकी है, 75 साल गुजर चुके हैं, कभी भी ऊपर से बुलावा आ सकता है, तो चलो कुछ ऐसा किया जाए जिससे समाज में कुछ अच्छा किया जाए, कुछ नया किया जाए जिससे समाज में परिवर्तन आए, समाज के लोगों को एक दूसरे की देखने की जो भावना है वो बदले, एक दूसरे को देखने का नजरिया बदले, एक दूसरे के प्रति अपनी सोच बदले। तो उसी में उन्होंने शुरू किया पॉडकास्ट। उसमें वो बताने लगे अपनी बचपन की कहानियां, अपनी नौकरी की कहानियां, अपनी शादी की कहानियां, बच्चों की कहानियां। पर एक दिन वे दोनों ने एक ऐसी कहानी बताई जिससे देखने वाले के होश उड़ गए, सुनने वाले के होश उड़ गए, लोग हक्का बक्का रह गए। वो कहानी थी दंगे वाली कहानी। उस दंगे वाली कहानी में अली की आवाज में पहली बार एक झिझक, एक कांप नजर आ रही थी।

सुनाई पड़ रही थी। 1984 में दंगे हुए थे। जब अली ये कहानी सुना रहे थे तो कृष्णा चुप थे। अली ने कहा, उस दिन कुछ लोग मुझे ढूंढ रहे थे। पॉडकास्ट में सन्नाटा छा गया था। फिर कृष्णा बोला, उस रात अली मेरे घर में छुपा था। अली, अली के अम्मी अब्बू, अली का पूरा परिवार कृष्णा के घर में छुपा था। अली की आंखों में आंसू आ गए। जब लोगों ने कृष्णा के घर पे हमला किया था अली और उसके परिवार को मारने के लिए, तब कृष्णा के पिताजी ने कहा था कि तुम लोगों को पहले हमें मारना पड़ेगा। जैसा कृष्णा जी ने यह बताया तो पूरा स्टूडियो खामोश हो गया और जो लाखों लिसनर सुन रहे थे वो भी सुन पड़ गए। पहली बार लोगों ने कुछ ऐसा सुना था कि जिससे उनकी रूहें कांप गई थी। उस रात कृष्णा के घर में एक ऐसी घबराहट पैदा हुई थी, हर पल कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी कोई दूसरा आएगा, अभी कोई दूसरा आएगा, अभी कोई तीसरा आएगा, कोई चौथा आएगा। और इन सारी घबराहट के बीच, उस रात के बीच, अली और कृष्णा एक दूसरे को देखते रह गए, उनके परिवार एक दूसरे को देखते रह गए। अली और कृष्णा को दोस्ती उनके विरासत में मिली थी, क्योंकि अली और कृष्णा के पिताजी दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त थे। ठीक उसी तरह भी अली और कृष्णा एक दूसरे के दोस्त थे। उनके दिल में हमेशा दोस्ती ने ज्यादा मायने रखा। और किस तरीके से कृष्णा के पिताजी ने अली की पूरी फैमिली को बचाई, ये कहानी जब इंटरनेट पर आई तो एक ही वीडियो में उनके चैनल के 10 लाख सब्सक्राइबर बन गए। और वही वीडियो कुछ महीने बाद उन्हें 50 लाख सब्सक्राइबर दे चुकी थी। अब उनका वीडियो इतना वायरल हो चुका था कि हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़ पे बस कृष्णा अली, कृष्णा अली, कृष्णा अली, कृष्णा अली छाया हुआ था। सारे न्यूज चैनल उन्हें बुलाने में लगे हुए थे। यूनिवर्सिटीज उनको बुलाने में लगी थी, स्कूल्स उन्हें बुलाने में लगे थे। हर जगह एक ही डिमांड थी, दो पुराने चावल को बुलाओ, दो पुराने चावल को बुलाओ। पर दोनों फेसे ही रहे, वो कहीं गए नहीं। वो हमेशा उसी गार्डन वाली बेंच पर वही चाय, वही हंसी, वही बैठे रहे। वो चाहते थे कि उनको कोई प्रोडक्ट नहीं बनना, या फिर उनका ये मकसद नहीं था कि बाद में लोग उनकी कहानियों को सिर्फ एक स्क्रिप्ट बनाकर भुला दे। उनका असली मकसद ये था कि उनकी कहानियां, जो सच्ची कहानियां हैं, वो लोगों के दिल में एक ऐसा परिवर्तन लाए जिससे लोगों के दिल में प्रेम की भावना जागे, लोगों का एक दूसरे को देखने का नजरिया बदले, एक दूसरे के प्रति जो लोगों का रवैया है वो बदले, एक दूसरे के प्रति जो सोच है वो बदले। और धीरे धीरे उनके पॉडकास्ट ने समाज में ये किया। उनके पॉडकास्ट इतने ज्यादा वायरल होने लगे थे कि उनके आसपास वाले हमेशा उनके दोनों के पास आके बैठते और उनसे कहते कि दादाजी, अपने बचपन का कोई और किस्सा सुनाइए ना, अपने नौकरी का कोई और किस्सा सुनाइए ना, अपने शादी की और कोई बात बताइए ना। दिन गुजरता गया, वक्त बीतता गया, उनकी कहानियां मशहूर होते गई, इतनी मशहूर हो गई कि दोनों के चैनल के अब हो गए थे 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स। जहां लोगों का सपना होता है 1 मिलियन व्यूज का, वहां पे दो पुराने चावल इस YouTube चैनल के पास हो गए थे 1 करोड़ सब्सक्राइबर। दोनों के पास अब YouTube के वजह से इतना पैसा, इतनी शोहरत आ गई थी कि उनके लिए अब उनका मकसद बहुत ज्यादा उन्हें नजदीक दिखाई दे रहा था। वो जान चुके थे कि अब उनकी बात लोगों के दिल तक पहुंच गई है। पर बात दिल तक पहुंचने से क्या होगा, जब तक लोग
उन चीजों को अपनी डेली रूटीन में लाएंगे नहीं। जब तक लोगों का असल में नजरिया नहीं बदलेगा, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और इसीलिए उन लोगों ने शुरू किया अब अलग अलग लोगों की प्रॉब्लम्स को जानना। अब वो लोगों की प्रॉब्लम्स जानने लगे और उन्हें सुलझाने लगे। तो उन्होंने अपने पॉडकास्ट में एक सेगमेंट जोड़ा और उसमें लिखा नए भारत की आवाज। अब नए भारत की आवाज क्या है ये सुनते हैं हम इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर इंतजार करूंगा आपका ब्रेक के बाद।

वेलकम दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शब्बीर, स्वागत करता हूं आपका आचार्य 90 एफएम में ब्रेक के बाद। जैसे कि आपने देखा कि दो पुराने चावल पॉडकास्ट तो काफी ज्यादा फेमस हो गया था, तो उसी के बीच उन्होंने एक और सेगमेंट खोला उसी चैनल के अंदर में, जिसका नाम था नए भारत की आवाज। अब उस नए भारत की आवाज में वो लोगों के घर घर तक जा पहुंचे थे, वो जानने लगे थे कि किसी की मदद करने के लिए सबसे जरूरी होती है इंसानियत। अब उन्होंने इस सेगमेंट में तैयार किया एक नई बात, उसमें उन लोगों ने लोगों से सवाल लेना शुरू किया। एक ड्राइवर का मैसेज आया जो कि सिख था, एक क्रिश्चियन टीचर का मैसेज आया, एक जैन बिजनेसमैन का मैसेज आया। सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग थी, पर सोल्यूशन सिर्फ एक ही था, इंसानियत। अली और कृष्णा ने डिसाइड किया। अब वो दोनों, एक सिख ड्राइवर जिसने उन्हें मैसेज किया था, वो उसके घर जाएंगे। तो जैसे अली और कृष्णा उस सिख ड्राइवर के घर पहुंचे, तो सिख ड्राइवर ने कहा कि